दोस्ती कदना वे राज यहाँ जानते हो वर्ते वे को निजात वस्तु अंदर वस्तु मावे तुझी हो वे पार साहेब संत्री उपना

पौड़ चक लगे चक तले खसम भाए हुरमत सुनो अगली वो वजू चुना खाए खसम करे बराबरी फिर गैर अंदर पाए वजो को आए अगला मुंह में पाना खाए जिस दा दिता खावना तिसके ये सबास नान चले।

0: बिना देन चढ़दी कला रखनी सचे पातशाह जी महाराज।
1: जी गुरु गरीब निवास यंत्र जामे सचे पातशाह जी महाराज साहिब कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सचे पातशाह जी महाराज तिना दे पावन स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे पावन स्थान दाजरिया भरते हुए गुरु किया संगत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार वजो बेअंत माया अरदास कराई है सतगुर सच्चे पातशाह जी। सतगुर जी आप जी नाम जाने जान हो सतगुर जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे अरुखता दे नाम दिदा काल राज की यात्रा सब

ਜੋ
देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव देव
कहाँ राम राजा कवन हर गोरा
कीट पतंग पुरंग
भंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले माघ देश के मंगेले वीर भंग से बुंदेले बाब पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस ने आवे देवते थे आए दोख देह के दलत है। जिने दोहे ध्यायो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन दाम फल फूल सुफलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पर पाछे पहुँचाता है चिटकी चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जश कहियत है। करते हैं विचार पैन पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानिये। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानिए। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सोछटा के अनुमानिए। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिए। तेज हूँ कतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है।
सुंदर स्वरूप है गूपन को भूप है गुरूप हूँ गुरूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है पुण्य के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई न पार पार वार हूँ को पार जा को की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हसी हल विधावे पूर्व बिना पार पावे असत अनाश है देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेव ना तयाद्व अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है सेव के अधीन है कटैया जय मजाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाद भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावध छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्री के गोल के हंसनी सी सिहारो महीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पल्लाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी गलास कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी सासी

ते बरंत भिन्न भिन्न तुहे तेति तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी काहू फूल राजा हुए बैठा काहू सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अभरछा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत तुपाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट नह हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छह सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारत दुष्ट दोख तेरा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दलहु उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरण सुबराता केलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अजदुज भय दयाला पूरण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दोख नात सह प्यापत कोई अड़ल।

चौपई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कहे जय भादो सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित

त्रिपुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाप तह निकट न आवै बिशन भगत किए फल होई आद ब्याछै सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधि प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर।

हर नाले हर नाल रहो तुम मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया कर शान सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दियां एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया दुर करम पाया तुद जिन कौ सिनाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

बाहे गए के राज गोविंदास तुवार दोहरा राज करेगा खालसा के रहना कोई तुवार हो समे बचे सरंज हो दोहरा उड़गे सुबह मलेश के करकोड़ा पासा रंका बजे बदे का नंगा छत्र चक्र वर्ते चतार चक्र भूते स्वयंभ सुमंग सर्वदास जुगते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग अंग विभूते देख तेग फतेह नुसरत बेद रंग आपतज अजनान गुरु गोविंद सिंह श्री अकाल पुरुष सहाय दरबार मित्र दरबारा सच कण वस्त्र रंकारा लक्ष्मी कणित गुण दरबारा सर्व ज्योति कर नमस्कारा दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन गुर आता जग मग दूत बिराज रही श्री अब चल नगर अपार सच कण के दरबार।

विस्वाद रूप स्माद रंग स्माद नागे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पाने विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद धरती विस्माद खाने विस्माद साध लगे परान विस्माद संजोग विस्माद विजोग।